उमापते महादेव की जय। बोलो श्री शिव शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम।

आज की महफिल जनाब राज इलाहाबादी साहब की एक गजल से शुरू कर रहा हूं, और गजल से पहले ये कथा पेश है।

0: दीजिए, लज्जत हम बढ़ा दीजिए।
1: Preserving the dreams of our ancestors. Radio Jagriti, 102.7 FM.

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय.
1: Looking for the latest Indian fashion and lifestyle products? Then don't miss the 2026 grand opening of India in Style Expo. Discover stunning saris, kurtas, footwear, jewelry, handbags, furniture, puja items, murtis and much more. Starting June 27th, we're open from 10 a.m. to 8 p.m. daily, opposite the Center of Excellence, Macquarie. And don't forget, our restaurant is now open serving authentic Indian flavors. See you at the India in Style Expo.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय.
1: Don't miss the incredible India Expo opening on July 3rd opposite the Center of Excellence in Macoya. They'll be open daily from 10 AM to 8 PM with amazing products and great deals.
2: The energy, the personality, the music. Spend your time with the Maverick right here on your number one station, Radio Jagriti 102.7 FM for Dil Dhadakne Do.

बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम नमो परमात्मने नमः। शुभ स्वागतम। स्पेशल वेलकम टू द प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम, हर्ड ऑन रेडियो जागृति एंड सीन ऑन टीवी जागृति। As we begin this session, we'd like to say special blessings to all of those that would have sat before me. We would like to say special thanks to

बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय. एज यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते. एंड तेषां सतत युक्तानां, व्हाट श्री कृष्ण भगवान इज सेइंग हियर, एज वी वुड हैव स्पोकन अबाउट इन आवर लास्ट सेशन, इन दिस 10th वर्स, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी, इट्स गोज हैंड इन हैंड टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट इन द प्रायर वर्सेस हियर. We would have spoken about machita madgata prana bhurayantas param param parasparam kathayantas

प्रेम से बोले श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। इट इज दिस हनुमान चालीसा दैट अलाउज मेनी मेनी डिवोटीज टू गेट थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक व्हाट इज गिवन ऑन टू यू थ्रू योर स्क्रिप्चर्स। लर्न दीज लिटल चौपाइज एंड दोहास एंड वर्सेस, चैंट देम, पुट देम इनटू प्रैक्टिस। यू नो देयर आर सर्टेन स्टिपुलेशंस दैट आर गिवन दैट इफ यू चैंट दिस हनुमान चालीसा 7 टाइम्स एवरी डे, इट विल गिव यू गुड लक। इफ यू चैंट दिस हनुमान चालीसा 11 टाइम्स एवरी डे, इट विल गिव यू गुड हेल्थ। If you chant Hanuman Chalisa 18 times every day, you get wealth. If you chant Hanuman Chalisa 21 times, you get moksha every day. Simple chanting of Shri Hanumanji Chalisa, my dear friends, will bring all the blessings for all the devotees, for everybody